0: जो होवे जो सी भंड कलेरा
1: पांडव अपन पालिए पांडव बंधान सो क्यों मंदा किया जिद मेरा जान
0: पांडव ही पांडव जे पंडे पायरा होए नान पंडे पायरा इको सच्चा सोए
1: जग मुख सदा सलाई अगर दीकार नानक को

जो तती तवी ते बैठ के शहीदी दिती है। एक विद्वान ने बड़ा सुंदर लिखा है, शहादत के हर कतरा खूं में छुपा इमा होता है, जुल्म जिसमें डूबे वही सैलाबे तूफान होता है। शहीदों की कतलगाह में कब बेहतर है काबा, तो खुदा भी शहीद खाक पे कुर्बान होता है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह शहीदी के संबंध में असी सारे उन्होंने श्रद्धांजलि उन्हों की याद विच सारे ने जुड़ना है, तो कीर्तन के नाल जुड़ना है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने यह खजाना सानू जो बाणी का बख्शिश किया है, इस बाणी के खजाने नाल धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने महान कृपा की है कि सतगुरां ने पहला राग लिखा है फिर शब्द है, तो सतगुर की अपार बख्शिश हुई है कि ये तुखारी राग सतगुरु पातशाह जी ने कृपा की तुखारी दे विच। तो आओ ये तुखारी राग धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने रागां विच बाणी उचारण की है। 31 राग सानू बख्शिश किए हैं, श्री राग माज गौड़ी आशा संघ भई बौरी गुजरी गंधारी ते बिहागड़ा सुहायो है, वडहांस सोरठ तनासरी जैतसरी टोडी ते बैराड़ी तलंग सूही सायो है, बिलावल गौंड रामकली नट अते माली गौड़ा मारू ते तुखारी कैदारा पैरों पायो है, बसंत सारंग मलार कानड़ा कल्याण प्रभाती ते बेपास जय जयवंती गुण गायो है। ਇਹ 31 ਰਾਗ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੋ ਆਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਜਤ ਬਸੰਤ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪਾਵਨ ਰਾਗ।

घनन घनन करे मेघवा बरसे, बिजली कड़के तड़क तड़क करे। जिस तरह बिजली कड़कती है, जिस तरह बदलों के बिजली गरजती है, इसे तरह मरंग दे बोल।

महादेव को कह सदाशिव निरंकार का चिंत नहीं भयो। आप अपनी बुद्ध देते वर्ण पिन पिन तो देते तुम्हारा लखाना जाय पसारा क्या भी सदा प्रथम संसारा एक रूप रूप स्वरूप रंग प्यो राव के गोपा अंड जेर से तिस्किनी और कुछ खान बो राय दिनी कौ राजा हो बैठा कौ सिमट प्यो शंकर खेटा सगली शिष्ट काय चंबो आजुगा सरु संयम और अच्छा मेरी तुम करो सिख बार असिख संगरो दुश्चिंत उठ थुक पाता सकल कलेश करो नन खाता जे अस्तुता सरणी परे तिनके दुष्ट दुख थे मरे पुरख जम पग परे त्यारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आया ताके काल निकलनी आया।

0: इंसान इस गल की खोज ना कर पैदा कितों होया सा कितों पैदाइश दे रही है एक नापाक पानी दे कतरे तो ते वजूद ऐदां दा खूबसूरत बनाई बैठा है ते वजूद करके तू अपने शीशे मोहरे जो खलो जांदा ते तेरा चेते नहीं करदा हटण नूं कदी वेख्या कर जिसने तेनू खूबसूरती दिती है पे ओ किड्डा खूबसूरत होवेगा ते कित्थों तू पैदा होया बंदे खोज दिल हर रोज
1: करीमल कमाल है
0: करीमल कमाल है गुरु गोबिंद सिंह जी कहंदे ने ओ कैसा है करीमल कमाल है कि हुस्नल जमाल है ओ खूबसूरती का मुजस्मा ही है बस दी पर ए सोचा कर कितों उपजे दूजी गल कह रहे तीसरी गल जिंदगी है ए नाटक जेड़ा ना इट इज जस्ट गोइंग टू बी फिनिश्ड ये तो खत्म होने वाला ही है और तू हाले अपना आप सवारी जांदा इसे काम ते सारा दिन वेस्ट ना कर दिया ना ना ना ना ये सवाल अपने मन ते करके कितों उपजे कह रहे के मान समावे बंदे खोज दिल हर जो तू ये खोजेगा ढूंढेगा तलाश करेगा ना फिर परेशानी मां दुनिया में बहुत ही देर नहीं रहना मेरे आदर जो मास्टर जी ने सवेरे अरदास तो बाद अपना बचने ही इथो आरंभ किया कि संसार नाशवंत है मैनू उस वेले याद आया सुनना जी पंजाबी विच ए जग सराय मुसाफरां दी इत्थे जोर वाले कई आ गए ए जग सराय मुसाफरां दी इत्थे जोर वाले कई आ गए शदाद नमरूद फरून जाए बे दावा बन खुदा कहा गए अकबर शाह जाए विच दिल्ली दे जी फेरी वांग बन जा रहे हैं पा गए शाह मुहम्मदा रहेगा रब सच्चा वाजे कूड़ दे कई बजा शाह मुहम्मदा रब और रब दे वरसा है भगवान भगवंत दे वरसाए है अकाल पुरख दिया जोतां संभाली फिरन वाले ए महापुरश क्योंकि दो चीजा रहिंदियां संसार विच गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने

0: मैं दो कह बेटा माफ करना।
1: नाम रहे हो साधु रहे हो रहे हो गुरु गोविंद को नानकिए जगत में किन जप्यो गुरु मंत्र।
0: नाम परमात्मा का श्री वाहिगुरु का सदी भी रहना ही है थे। ते जेड़े भी उदा नाम लेंदे ने जिमें मुख तौर ते एक मैं हफ्ते तो कलड़ी आप जी ने सुनाई है संत भूरी वाले गंगा दास जी आदर जो बाबा जवाहर सिंह साहब जी भाई साहब जवाहर सिंह साहब जी और परम परम परम आदर जो राजा साहब जी नाम रहे हो साधु रहे हो ये जिन्ना च चंद सितारे सियारे हैं धरती है आकाश है ये रहन गई और इन्हां दियां यादां इसे तरह ही मनाईयां जाणगी। दूसरी गल जिहड़ा मास्टर जी होणी अपना विचार आरंभ करन वेले कीती है कहिंदे ने अरदास कीती है अरदास करनी है पर एकाग्रता नाल संबंध रखती है। सुनना जी उर्दू दा सज्जन खुदा मंजूर करता है दुआ जो दिल से होती है एवं ओपरी असी भी अरदास करते। मेरा एक सज्जन ग्रंथी सिंह है बड़ा लायक है बहुत लायक है ओदे बलहार जाओ कहिंदा मैं बाहर जाके की करना ऐदां दा ही कम होना ना बाहर इत्थे ठीक है। ओ कहिंदा भी सवेरे अमृत वेले जिहड़ी अरदास करी दी ना ओ मनो तनो होके करी दी है क्योंकि उस वेले शांति है एकाग्रता है कुदरत पुरसकून फिरदी है ते गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी अगे दिलों अरदास करी दी है। दूजी गल चूंकि साडा पेशा है को 20 रुपये दे तो उन्नी अरदास कर दे जी को 500 का नोट दे तो दरगाह तो पार कर दे अगला जी सानू की देना ओ मंजूर नहीं हुंदी। बाप कहिंदा मैनू पता सवेरे अमृत वेले गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे अरदास कीते हुए मंजूर हुंदी है। तो अर्ज करना खुदा मंजूर करता है दुआ जो दिल से होती है मुश्किल बड़ी यही है कि बड़ी मुश्किल से होती है। एकाग्रता मंगता है मन चित कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड चाहिए है तो जो वो हो जाएगी तो फिर बंदा आपे इस ख्याल का

कौन करे, पत पवित्र लिए कर अपने सगल कर्त नमस्कारो, सगल कर्त नमस्कारो।

ओंकार हे वाहिगुरु हे अकाल पुरख तू सारिया ते मेर कर सारी सृष्टि ते मेर कर तू मालक है तू प्रतपालक है तू राखा है सबे जी समा तू सारिया ते मेर कर जो ईरखा द्वेष वैर विरोध जो मना च अग लगी हुई है दूर कर सारे अनु समत बख्श जगत सड़ रहे है अगा लगिया हुई ने तू कृपा कर तू मालक है सारिया ते कृपा कर जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार जित दुआरे उभरे जिते लेहो ओबा तू सारिया ते मेर कर सारे तेरे ने तू सारिया की कृपा कर ये अरदास है कि अन्न पानी मुछ उपाए ये पदार्थ सारिया नू दे सारिया ते कृपा कर दुख दलिद्र भन दर सारे दा दुख दूर कर दलिद्र

मेरी शेजड़ी ये आडंबर बने अविनाशी वर सुनिया प्रभ आवत सुनिया मेरी सेज सोही देख मोही गुरु के सिख का हिरदा हिरदे की सेजा हिरदे का मंदिर उदों जगमगा उदों शोभनीक हों जदों साहिब प्यारा इहदे हिरदे की सेजा दे उत्ते बैठा इस नूं आप प्रतख दीदार दिंदा है जदों वसदा हिरदे की सेजा दे उत्ते ते फिर गुरु के सिख दे रोम रोम विचों शुकराना निकलदा है।

आप दो मिनट लिए भी श्रवण करो और गुरु अर्जुन देव पातशाह जो अपनी बख्शिश कर रहे हैं, पंच ताल दी बराबर दी सवारी दी रीत है।